0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे।

रात 8 बजे प्रोग्राम रंगे गजल, 8:45 ते समाचार संध्या, 9 बजे अंग्रेजी दे विच खबरां दा बुलेटिन होएगा जो कि रिले कीता जाएगा आकाशवाणी दिल्ली तो, अते राती 9:15 बजे विविध भारती मुंबई दे प्रसारणा दा तुसी आनंद लै सकते हो, जिस दे तहत प्रोग्राम होएगा आपके लिए 9:30 बजे छाया गीत, 10 बजे आज के फनकार, अते राती 10:30 बजे छलती जाए रात।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: आओ सुनदे हां जगजीत सिंह ते चित्रा दी आवाज़ां दे विच भक्ति रचना।

सुबह की हवाओं में रेडियो की मिठास हो, हर दिल के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो, सुरों और बातों से दिन की शुरुआत हो, आपका हर पल खुशियों के साथ हो। जी बिल्कुल श्रोतियों, प्रोग्राम सचरी सवेर लेके हाजिर हाँ जी। मैं तो हड़ी अपनी दोस्त होस्ट विजय लक्ष्मी प्यार परी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते गुड मॉर्निंग दे नाल। प्रोग्राम सचरी सवेर हफ्ते दे सत्तों ही दिन कुछ ना कुछ वक्रा हुंदा है। प्रोग्राम सचरी सवेर दे विच ते दिन शनिवार वाले दिन हुंदा है जी। हफ्ता भरी सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते मॉर्निंग क्विज लेके विजय लक्ष्मी श्रोतियां दे मुखातिब हुई है। प्यार भरी सत श्री अकाल दे नाल इक वारी फिर सारे ही श्रोतियां नूं अज दे इस दिन दीआं बहुत बहुत बहुत सारीआं शुभकामनावां। कहिंदे दिन समा पल बड़ा खूबसूरत हुंदा है, ते उदो होर खूबसूरत हो जाता है जदों खूबसूरत जे रिश्ते साडे जीवन दे विच साडे नाल रहिंदे ने, ते रिश्तियां दे नाल जिंदगी दे विच मिठास वधी है, ते उसे मिठास दे नाल जिंदगी दी जिहड़ी रवानगी चलदी है। सो प्रोग्राम सचरी सवेर हफ्तावारी सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते स्टूडियो दा नंबर 0164-242-3031। जी रेडियो, ये जो RADIO रेडियो, ये मन का रेडियो हो सकता है, दिल की आवाज़ हो सकती है, एहसास का कारवां हो सकता है, प्यार का इकरार हो सकता है, दर्द का एहसास हो सकता है, क्योंकि रेडियो ते असी साझे करते हैं साडे जज्बात अल्फाजा के रूप दे विच। आवाज़ की दुनिया दे विच रेडियो की आवाज़ वाकई बहुत मिठी है। बहुत सारे श्रोतागण जदों रेडियो दे नाल जुड़ते हैं तो वह एक अजीब जिहा रिश्ता कायम करते हैं साडे सारिआं दे नाल, ते साडा भी एक रिश्ता साडे श्रोतियां दे नाल हुंदा है, ते रेडियो की आवाज़ का यह रिश्ता हमेशा ही चलता आ रहा है काफ़ी समय तो। सो आकाशवाणी बहुत ही खास अते इतिहासिक महत्व रखता है।

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है।
3: जी हाँ श्रोतियों, इन्हां कहानियां दे विच इक खूबसूरत जी कहानी ते प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने जो तुहाडे दिल दे काफी करीब है।
2: अल्लाह दुहाई है, दुहाई है, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है।
3: समिति 9 मई नू शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी ते है ता तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने जो की आधारित होएगा फिल्म 14वीं का चांद।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी आवाज दी यात्रा ले जो 90 साल पुरानी है पर अजे भी तड़कती है।
2: आवाज हमारी
1: 1936 तो लेके आज तक एक आवाज जो बनी भरोसा, एक मंच जिसने जोड़े दिल, एक नाम जो हर घर दी पहचान बनिया, आकाशवाणी।

जी हाँ दोस्तों, मिति 11 मई 2026 दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत तुसी सुनोगे रेडियो दे 90 साला सुनहरी दौर नू समर्पित एक विशेष प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देशन सीमा मेहरा, ममता अरोड़ा ते जसविंदर कौर। आओ राल मनाइए आकाशवाणी दे 90 साल दा सुनहरी युग साडी इस विशेष पेशकश दे नाल।

0: जी समा है 7:39 ते 49 सेकेंड। एक श्रोता मेरे नाल टेलीफोन लाइन ते है, कर दिया जी असि इन्हां नाल गल। हैलो
1: हैलो जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: जी उमेश जी, प्रोग्राम थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है, हाल चाल ठीक है तुहाडे?
1: जी बिल्कुल बढ़िया।
0: चलो बहुत अच्छी गल है जी। ते फिर उमेश जी करदे की हो?
1: मैं हरियाणा पुलिस में एज कांस्टेबल जॉब करता हूँ।
0: क्या बात है जी, क्या बात है। ते उमेश तुसी आकाशवाणी बटन

डायल करो स्टूडियो दा नंबर 0144-243-431 प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर सजरी सवेर दे तहत हफ्तावारी सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते श्रोतियां दे लई इक जरूरी सूचना अज शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी दे विच मेरियां गल्लां मेरे गीत जो सिलसिला नवा शुरू किया गया उस दे विच साडे स्टूडियो दे विच प्रोग्राम पेश करनगे नौजवान विद्यार्थी निशांत कुमार गल्लां करनगे ओह अपने दिल दियां ते सुनाउणगे जी अपने गीत प्रोग्राम युवाणी दे तहत हफ्तावारी नो इट्स नॉट अ हफ्तावारी सिलसिला मेरियां गल्लां मेरे गीत दे इस नवे सिलसिले दे विच अज नौजवान विद्यार्थी निशांत कुमार नूं तुसी सुनोगे प्रोग्राम युवाणी दे तहत मेरियां गल्लां मेरे गीत

0: पेश है सबका फेवरेट
1: अर्क गुलाब अर्क केवड़ा चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है।
3: जी हां श्रोतियो, इना कहानियां दे विच इक खूबसूरत जी कहानी ते प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने जो तुहाडे दिल दे काफी करीब है।
2: अल्लाह दुहाई है दुहाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है।
3: समिति 9 मई नू शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने।

0: राज्यपाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में

0: कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना

0: और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, I'm going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, आज बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
0: खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां।

0: विखे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा प्रधान नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रियों ते सारे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहुं चुक समागम विच शामिल होने की उम्मीद है। सहुं चुक समागम सवेरे 10 बजे शुरू होना है। इस विच देश भर तो लखां पार्टी समर्थकां, सियासी नेतावां ते पतवंतियां दे आउण दी उम्मीद है। राज्यपाल आर एन रवि मुख्यमंत्री अते नवे मंत्रीमंडल दे मैंबरां नूं अहुदे अते सरकारी भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउणगे। इस दौरान नवे चुणे गए संसदी पार्टी दे नेता सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान कीता है कि एक सेवा मुक्त जज दी अगवाई वाला कमिशन राज विच संस्थागत भ्रिष्टाचार की जांच करेगा। उन्हां अगे कहा कि आरजी कार हस्पताल अते संदेश खली विच वापरियां घटनावां दी वी जांच शुरू कीती जाएगी। अधिकारी ने अहद लिया कि पार्टी दे चोण मनोरथ पत्र विच कीते सारे वादे समय सिर पूरे कीते जाणगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल विच भाजपा सरकार देश दीआं सरहदां नूं सुरक्षित करेगी ते राष्ट्रीय सुरक्षा विच सब तों वड्डे पाड़े नूं दूर करेगी। कल कोलकाता विच नवें चुणे गए भाजपा विधायकां नूं संबोधन करदिआं श्री शाह ने कहा कि भाजपा दी जित संगठन दा पसार करन जां अपनी विचारधारा दी पुष्टि करन बारे नहीं है, सगों राष्ट्रीय सुरक्षा नूं मजबूत करन बारे है।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री ने कहा कि लंबे समय तो बंद पईआं योजनावां नूं भाजपा सरकार मुड़ शुरू करके पश्चिम बंगाल दी जनता दीआं सारीआं आसां उम्मीदां नूं पूरा करन दा काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु विच टीवी के मुखी सी जोसफ विजय की अगुवाई हेठ सरकार के गठन नूं लैके अनिश्चिततावां जारी ने। नवा मोड़ उदों आया जदों IUML ने टीवी के नूं सरकार बनाउण लई हमायत देण दीआं खबरां नूं रद्द कर दिता। यह भी खबर आ रही ने कि अज होण वाला सहुं चुक समागम नहीं होएगा। इस तों पहलां टीवी के ने दावा कीता सी कि अदाकार तों सियासतदान बने सी जोसफ विजय ने कल एक बार फिर राजपाल नाल मुलाकात कीती ते सरकार बनाउण दा दावा पेश कीता ते कहा कि उनां कोल बहुमत है। इस दौरान प्रोफेसर खादर मोहिदीन की अगुवाई वाली IUML ने कहा कि उन्हां दी पार्टी ने टीवी के नूं समर्थन पत्र नहीं दिता है। एक होर हैरानीजनक कदम विच AMMK पार्टी दे नेता TTV दिनाकरन ने राजपाल नाल संपर्क कीता अते AIADMK दे जनरल सकत्तर एडापड्डी पलानीस्वामी नूं नवा मुख्यमंत्री बनाउण लई मन्नार कदुई तों चुणे गए इकलौते विधायक दा समर्थन पत्र सौंपिया। केरल विच नवी सरकार दे गठन बारे विचार वटांदरा चल रहा। UDF विच मुख पार्टी कांग्रेस वल्लों एतवार तक अपने नेता दा ऐलान कीते जाण दी उम्मीद है। इस दौरान असाम विच भाजपा दी अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ सरकार मंगलवार नूं लगातार तीजे कार्यकाल लई सहुं चुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहुं चुक समारोह विच मुख मेहमान होणगे। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी नूं अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त कीता है। वह जनरल अनिल चौहान की थां लैणगे जिन्हां दा कार्यकाल 30 मई नूं खत्म हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अहुदा संभालण की तरीक तो वह फौजी मामलों के विभाग के सकत्र वजों भी सेवा निभाउणगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी भारतीय फौज के एक बहुत ही तजर्बेकार और प्रतिष्ठित अधिकारी ने। इस समय सितंबर 2025 तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सकत्रेत विच फौजी सलाहकार वजों सेवा निभा रहे ने। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन नूं समुद्री फौज मुखी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस समय समुद्री फौज की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वजों सेवा निभा रहे ने। उन्होंने भारतीय समुद्री फौज में करीब 4 दहाके की शानदार सेवा रही है। यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा XNLA@AIR जलंधर। आकाशवाणी अज अपनी स्थापना ते 90 साल पूरे होण नूं मना रहा है। आकाशवाणी की स्थापना 8 मई 1936 नूं ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई सी। अज इस खुशी के दिहाड़े ते आकाशवाणी के पंजाब स्थित मुख स्टेशन जलंधर और पटियाला विच एक वॉकेथॉन कराई गई जिसनों पंजाब के कलस्टर हेड और DDG श्री रणजीत मीना, दूरदर्शन के DDG RL चारंगल ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अज दोवां थावां ते इस वॉकेथॉन विच आकाशवाणी स्टेशनों के मुलाजमान समेत प्रोग्राम पेशकर्तावां अते बहुत सारे स्रोतों ने विशेष तौर ते हिस्सा

देश के लिए भी जीना इबादत से कम नहीं, तिरंगे से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जो मिट गए हैं वतन पर हंसते हंसते, उनसे बढ़कर कोई महान नहीं। प्रोग्राम महक पंजाब दी, हफ्तावारी सिलसिला देशभक्ति दे गीत। आओ सुनते हैं एक और देशभक्ति दे गीत।

0: सरसे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इस दिन ही ऐसा प्रोग्राम देशभक्ति दे गीत प्रोग्राम महक पंजाब दी दे तहत खत्म होता है। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 1.1 मेगाहर्ट्ज़ से स्टूडियो की घड़ी के समा 8:09 28 सेकेंड का हूँ तो थोड़ी देर बाद ठीक 9 बजे विविध भारती मुंबई के प्रसारणा का तुम आनंद माणोगे, जिस के तहत सवेरे 9 बजे चित्तर लोक 9:30 बजे आज के फनकार सुनते हैं विविध भारती मुंबई के प्रसारण।

दिल में उतरती आवाज अरिजीत सिंह की, इनकी गायकी का अंदाज भी अलग है। गदर 2 फिल्म का गाना आपने सुना, सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत, और अब एक छोटा सा अंतराल।

ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम फिर से हाजिर हो गए चित्रलोक कार्यक्रम में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपने गोरा, चुखेरबाली, घरे बाहर जैसे कई उपन्यास लिखे। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है साथियों जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक या गीत। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। साल 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

0: परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले, बहुत ही प्यारा गाना था ये। साथियों, ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट, इनका सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज़, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आप

0: ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती,

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। पेश कर रहे हैं स्टेट हुकअप प्रोग्राम च अज दा विशा प्रवासी पंछी, पेशकश गुरविंदर सिंह हुरां दी, वाचिका सुखप्रीत कौर, ते इस दा प्रसारण आकाशवाणी दे बठिंडा ते पटियाला चैनल भी नालो नाल कर रहे हैं।

कुदरत दा सब तो अनमोल तोहफा ने पंछी आसमान विच उड़दे हुए पंछी इस सोचन ते मजबूर कर दिंदे ने कि ये पंछी कित्थों आंदे ने कित्थे जांदे ने क्योंकि इन्हां वास्ते तां कोई सरहद नहीं चाहे इंसानां वास्ते है। खास तौर ते जेकर असी झात मारीए प्रवासी पंछियां ते तां दूर होंदे ने मौसम बदलदा है फिर आ जांदे ने पर प्रवास की गल करिए प्रवासी पंछियां की गल करिए प्रवास शब्द जानवरां दी आबादी दे समें समें ते वड्डे पैमाने दी गति दा वर्णन करता है। प्रवास नूं देखण दा एक तरीका है सफर कीतियां दूरियां ते विचार करना। स्थाई निवासी प्रवास नहीं करदे ने, उह साल पर भोजन दी लोड़ींदी सप्लाई लब्भण दे योग हुंदे ने। छोटी दूरी दे प्रवासी मुकालबतन छोटियां हरकतां करदे ने, जिवें कि पहाड़ी किनारे उत्ते उच्च तों नीवीं ऊंचाई तक। दरमियानी दूरी वाले प्रवासी कुछ 100 मील की दूरी

कारण ने ए पंछी जेड़े हैगे आ ए साउथ वल जांदे ने। बहुत सारिया एदे पिछे फैक्टर्स ने। एक तो यह है कि ये इस तरह जाण दे नाल इन्हां दी माइग्रेशन दे नाल उतों अत दी जिहड़ी कि नैगेटिव 50 माइनस 40 डिग्री जिहड़े इहो जिहे तापमान ने उन्हां नूं अवॉइड कर जांदे ने। इस तरह उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ मोर्टैलिटी घट जांदी आ, अपने आप नूं बचा लैंदे ने। दूजा खास कारण यह है कि जिहड़ा दिन दी लेंथ जिहड़ा हैगा दिन छोटे ने उत्तरी खंड वाल जदों ही दक्षण वाल जाते हैं जिहड़ा दिन वध जाता है तो उन्होंने खाण पीण लई समा वध मिल जाता है। एक जिहड़ी हैगी भोजन की कमी, तीन जिहड़े मुख्य कारण ने जिन्हां करके जिहड़े पंछी हैगे आ माइग्रेट करते हैं। पर जदों ये माइग्रेट करते हैं तो एक होर चीज़ जिहड़ी हैगी आम तौर पर पूछी जाती है कि ये अंदरूनी कारण करके करते हैं कि कोई बाहरले कारण ने जिन्हों आप एक्सटरनल फैक्टर्स कहने ने। जिहड़े तां एक्सटरनल फैक्टर आ उहदे विच मुख तौर ते इह फैक्टर आ कि जिहड़े दिन दी लेंथ, दिन दी लंबाई, दिन दा किन्ना चिर घंटे सूरज रहिंदा है इह डिटरमिन करदी आ। इंटरनली इह हैगा कि उहनां दे जिहड़े प्रजनन अंग ने, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने, उहनां दी स्टेट की आ। क्योंकि एक्सपैरीमेंट्स ने वर्ल्ड वाइड शो किया है कि जे इन्हां पंछियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव इन्होंने करके देखे ने एक्सपैरीमेंट्स के विच तां वो पंछी कैप्टिविटी विच माइग्रेट नहीं करते, उन्हां चो इंस्टिंक्ट नहीं हुंदा। सो ये भी कारण ने। इस तो इलावा एक चीज़ बहुत मोटे तौर पर समझन की लोड़ आ, जदों कि पंछी अपनी वापसी करते ने दक्षण तो उत्तर वल, उस टाइम सब तो पहला जिहड़े कि अडल्ट मेल हुंदे ने वो पहला पहुँचते ने अपनी नेस्टिंग साइट पर। उस तो बाद आती है अडल्ट फीमेल्स का ग्रुप पहुँचता है, तो तीजा ग्रुप वो हुंदा है जिदे विच वो छोटे बच्चे ने जिहड़े कोई साल दे ने जां दो साल दे ने हजे अडल्ट नहीं है वो पहुँचते ने। पर ये तो रिवर्स हुंदा, ये तो उल्टा वो हुंदा कि जदों उन्होंने दक्षण वल जाना हुंदा है उदों पहला की हुंदा, छोटे बच्चे पहुँचते ने, उस तो बाद अडल्ट फीमेल्स पहुँचदियां ने, उस तो बाद अडल्ट मेल्स पहुँचते हैं।

लख बहार आउण ते भी लख बहार आउण ते भी मौल दी नहीं आस था दिन।

0: दिन दिन क्यों नाल मेरे हो रे आए हादसा।
1: क्या बात है, बहुत
0: दिन दिन क्यों नाल मेरे ओ मैं बनाउणा चाहे आए जिस किसे नू अपना मैं बनाउणा चाहे।

0: दिन दिन क्यों नाल मेरे फूर आए हादसा, दिन ब दिन क्यों नाल मेरे होर आए हादसा। नेड़े मंजल दिस रही है पैर पुले रास्ता,
1: क्या बात है।
0: नेड़े मंजल दिस रही है पैर फुले रास्ता।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: शुक्रिया
1: बहुत
0: जी,
1: खूब,
0: मेहरबानी।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। जीत साहब, इस कविता नु पेश कीता बहुत ही सोहने अंदाज दे विच, बड़ी सोहनी तुसी इस गजल नु लिखिया, क्या बात,
0: शुक्रिया
1: बहुत
0: जी,
1: खूब।
0: मेहरबानी।
1: अमरजीत जीत साहब, तुसी इत्थे आए, अपनियां रचनावां साडे नाल सांझियां कीतियां, ते बहुत सारियां गल्लां असीं बाहरली धरती बारे भी कीतियां, आपदे लोकां बारे भी गल कीती, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत धन्नवाद जी, और एक बारी फिर रेडियो आकाशवाणी बठिंडा दे सारे स्टाफ दा धन्नवाद, ते अज जिन्ने भी स्रोते ने सानू सुनियागा उन्हां नू एक बारी फिर तहे दिल धन्नवाद जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी
1: जी, शुक्रिया जी। इस दे नाल ही दोस्तों, मैनूं गुरदीप गिल नूं अज दा साडा हफ्तावारी सिलसिला सुखन दे वारस इत्थे ही संपूर्ण करन दी दिओ आग्या। खुश रहो, तंदरुस्त रहो, रब राखा।
2: प्रोग्राम सुखन दे वारस दे विच अज साडे मेहमान सन उगे शायर अते गजलगो अमरजीत सिंह जीत, मेज़बान गुरदीप कौर गिल, आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:57 ਤੇ 27 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ।
3: ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜੋ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੜਕਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ 1936 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਬਣੀ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਜਿਸਨੇ ਜੋੜੇ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਿਆ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ।

जी हाँ दोस्तों, मिति 11 मई 2026 दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत तुसी सुनोगे रेडियो दे 90 साला सुनहरी दौर नू समर्पित एक विशेष प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

0: सीमा मेहरा, ममता अरोड़ा ते जसविंदर कौर। आओ रल मनाइए आकाशवाणी दे 90 सालां दा सुनहरी युग।
1: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਕਨ ਦੀ ਪਾਲੀ ਸੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਸੁਣੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ 11:05 ਤੇ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ।
2: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौचीशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल

सिक्किम तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेल वेल वेल, हम भी सोचते हैं आपके लिए 24x7 और आपके दिलों में रहते हैं। कैसे हैं आप जी जनाब? जी हाँ, आपकी दोस्त आ चुकी है आरती मल्होत्रा लेकर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आप सभी के लिए। आकाशवाणी दिल से दिल तक 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप जुड़े हैं हमारे साथ और बॉलीवुड ट्रेल्स की शुरुआत हो चुकी है धमाकेदार 24x7। हम रहते हैं आपकी सेवा में। एंड वेल, क्या हो रहा है जी? धुरंधर का तो नशा ही नहीं उतर के दे रहा और सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर और बस कमाई पे कमाई करे जा रही है भाई। आंकड़े गिनने बंद कर दीजिए क्योंकि हाथ नहीं आने वाले हैं। वेल एनीवेज, एक और जबरदस्त हिट मूवी अभी जो रिलीज हुई है जिसके हम बात करने वाले हैं। रितेश देशमुख के डायरेक्शन में बनी राजा शिवाजी 50 करोड़ पहले हफ्ते में कमा चुकी है और इसका आंकड़ा अब 68 करोड़ तक जाने वाला है। हिस्टोरिकल ड्रामा, वेरी वेल डायरेक्टेड बाय रितेश देशमुख और साथ ही उन्होंने काम भी किया। संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जन्नी लिया, महेश मांजरेकर, इन सभी ने अपनी जबरदस्त भूमिका दिखाई है। शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी इस फिल्म ने ये साबित कर दिया है कि यस, मराठा एम्पायर जो उन्होंने बनाया था और उसकी जो नींव डाली थी उन्होंने, वो आज तक इसीलिए मजबूत है क्योंकि उसकी नींव बड़ी जबरदस्त थी। एंड वेल, जनीलिया ने इसे प्रोड्यूस किया है अपनी दोस्त ज्योति देश पांडे के साथ और मुंबई फिल्म कंपनी एनजीओ स्टूडियोज के साथ मिलकर इसको रिलीज किया गया है। एंड वेल, देखिए धुरंधर 2 का या रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन एक अच्छी मूवी अगर आप देखना चाहते हैं, एक हिस्टोरिकल ड्रामा अगर आप देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें जिससे आप इंस्पायर हो सके, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और आपको उनके जो बेटे के ऊपर बनी थी मूवी वो तो याद ही होगी। वो नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि वही तो है आज का बॉलीवुड धमाका सवाल हमारा कि कौन है उनके बड़े बेटे जिनके ऊपर हाल ही में पिछले साल ही एक मूवी बनी थी और बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई थी, जिसके जवाब आप मुझे भेज सकते हैं 9868107070। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स अपनी दोस्त आरती के साथ। एंड वेल, कमिंग अप नेक्स्ट इज रितेश देशमुख की बात की है तो हाउसफुल 2 से आप सभी के लिए शान श्रेया घोषाल की वॉइस में। डू यू नो

जी, बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ और बड़े पर्दे के साथ। अब हम बात करते हैं बड़े पर्दे के बाद, अब हम बात करते हैं छोटे पर्दे यानी ओटीटी रिलीज की। और बहुत सारी रिलीज हुई हैं, लेकिन उससे पहले जो मुझे बड़ी जिस चीज की जिस सीरीज की एक्साइटमेंट है और जो मैं देखना पसंद करती हूँ, 15 मई को रिलीज होने वाली है ये, और कर्तव्य, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है दोस्तों। सैफ अली खान जिन्होंने किरदार निभाने वाले हैं महादेव का, महादेव का भक्त जो कि एक पुलिस वाला है और अपनी फैमिली और अपनी ड्यूटी के बीच में फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से। ट्रेलर बहुत दमदार है, पैक्ड विद सस्पेंस, एक्शन एंड इमोशनल डेप्थ, और उसने बहुत सारे अपने व्यूज तो पहले से ही कलेक्ट कर लिए हैं और लोग वेट कर रहे हैं। एंड सैफ अली जो इतने इंटेंस रोल में दिखाई दे रहे हैं, पवन मलिक के किरदार के अंदर वो दिखाई देंगे, सीनियर पुलिस ऑफिसर, एंड बहुत बड़े भक्त दिखाए हैं महादेव के। और साथ ही इस फिल्म को, जी हाँ, यही तो सस्पेंस है, इस सीरीज को जो प्रोड्यूस करने वाले हैं

कर रहे हैं वो हैं शाहरुख खान, और 15 मई को ये आने वाली है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एंड भाई अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं, जब सैफ अली साहब की बात हुई है तो 2004 में रिलीज हुई थी हम तुम, आपको याद होगा, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर आदित्य चोपड़ा के बैनर में बनी, 8 करोड़ की लागत में बनी थी और 42 करोड़ से ज्यादा इसने बिजनेस किया था। रानी मुखर्जी के साथ जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी जो इन्होंने दिखाई थी वो आज भी हमें याद है, और उसका चक दे सारी कम याद ही होगा आपको, सोनू निगम और साधना सरगम की वॉइस में। चलिए एंजॉय करते हैं।

0: करते।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। सवाल पूछ चुके हूं मैं आपसे बलवाने के लिए आपको बॉलीवुड सरताज और बहुत सारे जवाब भी आ रहे हैं। 9868107070 नंबर है हमारा। और सवाल बड़ा आसान था कि शिवाजी छत्रपति के जो बड़े बेटे हैं वो कौन है और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। एनीवेज चलिए कुछ और बात कर लेते हैं भाई। टॉप बॉलीवुड ग्रॉसर्स जरूर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मूवीज हैं जिन्होंने बहुत बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर कमाई की है। तो धुरंधर द रिवेंज तो है ही, बॉर्डर 2 भी पीछे नहीं रही और भूत बंगला की 234 करोड़ की अब तक कमाई हो चुकी है। रोमियो भी 118 करोड़ कमा चुकी है और राजा शिवाजी 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और अंदाजा है कि इससे कहीं ऊपर चली जाएगी। वेल आजकल टॉक ऑफ द टाउन कौन है? रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह बन चुके हैं न्यू बॉक्स ऑफिस किंग और प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनको बड़ी बड़ी मूवीज में लेने के लिए। मिड बजट रोमांटिक फिल्म्स स्ट्रगल कर रही हैं थिएटर्स पर और इसी के साथ ही ओटीटी सक्सेस बहुत हेल्प कर रहा है जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं उन सभी के लिए। और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड देखने को मिल रहा है। एंड द ट्रेंडिंग स्टार्स आर रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी एंड रितेश देशमुख। वेल बॉलीवुड की और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ और बॉलीवुड सरताज के साथ बिल्कुल वापस आऊंगी मैं आप सभी के लिए। अभी नेहा कक्कड़ की वॉइस में वन ऑफ माई वेरी फेवरेट नच दी।

0: सी तेरी बोली,
1: हाय
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे? अरे
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर

0: बजे से दो बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है पपल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेल जी, समय हो चला है आप सभी को बताने का कि कौन है आज का बॉलीवुड सरताज। तो आज के बॉलीवुड सरताज बनते हैं आप सभी, क्योंकि भाई आज थोड़े टाइम के पाबंदी की वजह से किसी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन बॉलीवुड सरताज आप सभी हैं। बसंत तोमर जी, आपसे बात हुई थी एंड आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। साथ ही पंकज है अमरावती से, जिन्होंने सही जवाब देकर बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और सलीम मलिक मेरठ से, साथ ही प्रवीण चौहान, इन्होंने सही जवाब दिया है। और सांभाजी राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, ये सभी हमारे बनते हैं बॉलीवुड सरताज। और सही मायने में आप जब हमसे जुड़ते हैं दिल से दिल का रिश्ता बना के, तो डेफिनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एफएम रेनबो सांभाजी, ये शाजी भोसले उमेश कुमार खयाला से इन्होंने हमें मैसेज किया है। मोहम्मद इम्तियाज साहब, आप भी बनते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और साथ ही ऋषु कटारिया, पवन कटारिया पंजाब से, और इन्होंने सही जवाब दिया है कि सांभाजी महाराज ये शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे और जिनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वेल एनीवेज, एंड अब समय हो चला है कि हम आगे बढ़े अपने बॉलीवुड के गॉसिप्स को लेकर। और बॉलीवुड गॉसिप्स में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए, बहुत सारी उठा पटक है और बहुत सारी न्यू रिलीजेस है जो अभी आने वाली है। कह रहे हैं कि भाई सलमान खान भी दस्तक देने वाले हैं बहुत जल्द अपनी फिल्म को लेकर, और उनकी फिल्म के बहुत सारे कयास लगा जा रहे हैं। मातृभूमि शायद इसको लेकर वो बहुत जल्द ओटीटी पर आने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही रणवीर सिंह, जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनके साथ काम करें। और बड़े दुख की बात है कि बड़ी सारी रूमर्स भी फैल रही है भाई हमारे शक्ति कपूर साहब, परमात्मा उनकी उम्र को लंबा करे। और कैसे एक न्यूज फैल गई उनके ना रहने की, जो कि बहुत बुरी बात है। जब तक आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर ना हो, प्लीज किसी के लिए इस तरह के बातें मत कहिए। और खुद सोचिए, आप वो भी इंसान है, उनकी फैमिलीज है, उनको कैसा लगता होगा जब इस तरह की चीजें आती है। वेल एनीवेज, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज, आकाशवाणी दिल से दिल तक। इसके बाद लाइंड अप प्रोग्राम्स है आप सभी के लिए, जिसको आप एंजॉय करेंगे। फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मस्ती की पाठशाला आप सभी के लिए रहेगी चक द इंडिया से नरेश कुमार की वॉइस पे। एंजॉय कीजिए।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ 12:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦ ਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा

0: योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Mr. Sovendu Adhikari was sworn in as the first BJP Chief Minister of West Bengal today at a ceremony at Brigade Parade Ground in Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath along with the chief minister. The governor, R. N. Ravi, administered the oath of office and secrecy to the ministers. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Kshudi Ram Tudu.
2: Ami Shubhendu Adhikari, Ishwarer name shopot koritechi je bidhi dara sthapito Bharater Sangbidhaner proti আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh were also present with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states on the occasion. Earlier, Prime Minister held a roadshow before reaching the brigade ground. Rabindra Jayanti is being celebrated today on Pochisho Boishak, marking the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Cultural functions are held globally with major celebrations at Shanti Niketan, Vishwa Bharati University and throughout the West Bengal and Bangladesh, featuring Rabindra Sangeet, poetry, dance and drama. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have offered tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion of Pochisho Boishak. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. IUML, headed by Professor Khader Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamila Vetri Kadagam. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Manargudi, to make AIADMK General Secretary Idappadi Palaniswamy as the Chief Minister. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff, CDS. Ministry of Defence said Lieutenant General Subramani will also serve as the Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on the 30th of this month. The government

0: नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी आवाज दी यात्रा ले जो 90 साल पुरानी है पर अजे भी तड़कती है।
1: आवाज हमारी
0: 1936 तो लेके आज तक एक आवाज जो बनी भरोसा, एक मंच जिसने जोड़े दिल, एक नाम जो हर घर दी पहचान बनिया, आकाशवाणी।

जी हाँ दोस्तों, मिति 11 मई 2026 दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत तुसी सुनोगे रेडियो दे 90 साला सुनहरी दौर नू समर्पित एक विशेष प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देशन सीमा मेहरा, ममता अरोड़ा ते जसविंदर कौर। आओ राल मनाइए आकाशवाणी दे 90 सालां दा सुनहरी युग साडी इस विशेष पेशकश दे नाल।

0: करना है एक नंबर डायल 7837963306 इस नंबर ते इश्तहार देने लई जानकारी हासिल कर सकते हो। नालों नाल एक ईमेल भी तुसी कर सकते हो airfm.bti@gmail.com दे उत्ते।
1: इता बैदू बहुत सौखा करता, मैं भी हुणे डायल करदा 7837963306।

0: जी हाँ श्रोतियो, इन्हां कहानियां दे विच इक खूबसूरत जी कहानी ते प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने जो तुहाडे दिल दे काफी करीब है।
1: अल्लाह दुहाई है दुहाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है।
0: समिति 9 मई नूं शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो की आधारित होएगा फिल्म 14वीं का चांद ते।

0: प्रोग्राम पेश करेंगे सुधा। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। सुनना ना बोला मिट्टी 9 मई शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।
1: इश्क सौखा नहीं हुंदा, इस विच इम्तिहान भी हुंदे ने ते दूरियां भी। यूसुफ अते जुलेखा दी कहानी हुन मुड़दी है एक नवे मोड़ ते, जिथे इश्क बन जांदा है सबर दी परख। की ए दोवे मिल पौनगे या किस्मत लिखेगी कोई होर कहानी। जी स्रोतियो, प्रोग्राम बाता पुराने पंजाब दियां दे तहत मिती 3 मई दिन एतवार शाम 5 बजे तुसी सुनोगे किस्सा यूसुफ जुलेखा भाग दूजा।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बरार। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 3 मई दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां। आवाजा दा ओ सफर जो पीढ़ियां तो दिलां नाल जुड़िया रहा जी रेडियो। जिसने खुशियां वंडियां।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 11 मई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

0: वाचक निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बराल। समय याद रखियो 11 मई दिन सोमवार शामी 5 बजे।
1: पेश है सबका फेवरेट
2: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है।
4: जी हां श्रोतियो, इन कहानियां दे विच इक खूबसूरत जी कहानी ते प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने जो तुहाड़े दिल दे काफी करीब है।
3: अल्लाह दुहाई है, दुहाई है, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है।
4: समिति 9 मई नू शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो की आधारित होएगा फिल्म 14वीं का।

0: प्रोग्राम पेश करेंगे सुधा। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। सुनना ना बोला मिति 9 मई शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।
1: अल्लाह तू है।

0: नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी आवाज दी यात्रा ले जो 90 साल पुरानी है पर अजे भी तड़कदी है।
1: आवाज हमारी
0: 1936 तो लेके आज तक एक आवाज जो बनी भरोसा, एक मंच जिसने जोड़े दिल, एक नाम जो हर घर दी पहचान बनिया, आकाशवाणी।

जी हाँ दोस्तों, मिति 11 मई 2026 दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत तुसी सुनोगे रेडियो दे 90 साला सुनहरी दौर नू समर्पित एक विशेष प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

0: डिश है सबका फेवरेट।
1: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार तन मन को ताजा कर जाए।
2: इश्क सौखा नहीं हुंदा, इस विच इम्तिहान भी हुंदे ने ते दूरियां भी। यूसुफ अते जुलेखा दी कहानी हुन मुड़दी है एक नवे मोड़ ते, जिथे इश्क बन जांदा है सबर दी परख। की ए दोवें मिल पौणगे या किस्मत लिखेगी कोई होर कहानी। जी स्रोतियो, प्रोग्राम बाता पुराने पंजाब दियां दे तहत मिति 3 मई दिन एतवार शाम 5 बजे तुसी सुनोगे किस्सा यूसुफ जुलेखा भाग दूजा।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बरार। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 3 मई दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां।

जी भैनों, तो तुसी आनंद माण रहे हो जी किरणपाल दे नाल प्रोग्राम घर परिवार दा। सो बस तुहाडे तक पहुंचण दा थोड़ा जिहा कई बारी हो जांदा है ना इदां हो भी जांदा है, और थोड़ा थोड़ा तुहाडी भी वेट है जिहड़ी उड़ीक है कि सोहणी बनदी जा रही होगी कि किरण क्यों ने साडे घर आई। कोई गल नहीं जी, जरूर तुहाडे घर पहुंचांगी। फिलहाल तुसी गीतां दा आनंद माणदे रहो जद तक मैं तुहाडे घर पहुंचदी हां।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 11 मई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे, प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

0: जी, तो मैं तो यही कहेंगे कि आइए आपकी बातों के नाम, फरमाइश के नाम क्योंकि फरमाइश तो अड़ी है जी। चलो फरमाइश दे लाई, साढ़े को श्रोते पहुंच चुके ने जी। कौन है आप उन्हें तो पूछ दी। हेलो,
1: हेलो करणपाल माधवी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हो?
1: माधवी, मैं सुखबीर सिंह छाजली बोल रहा हूँ, संगरूर को।
0: शाजली साहब, स्वागत आप जी का।
1: वाह जी वाह, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश कर दें
0: शुक्राने
1: तुसी।
0: जी, होर वधिया कर दिए तुहाडी फरमाइश दे नाल। दसो केड़ी फरमाइश है?
1: माधवी, रंग मूवी आई थी, थोड़ा दिल चीर के पेश तेरा
0: ओ
1: ही सुना
0: तेरा
1: होगा।
0: भला
1: हाँ
0: हो जे, की करना चीर के दिल, किसे दा कुछ नहीं जाना।
1: जी, किसी
0: चलो
1: का कुछ
0: खैर,
1: नहीं
0: गीत
1: खाना जी।
0: गीत पसंद दा सुना देनी है, ठीक है? फोन कर ले। शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया मैम, थैंक यू।

0: नमस्कार दोस्तो, तैयार हो जाओ एक ऐसी आवाज दी यात्रा लई जो 90 साल पुरानी है पर अजे भी तड़कदी है।
1: आवाज हमारी
0: 1936 तो लेके आज तक एक आवाज जो बनी भरोसा, एक मंच जिसने जोड़े दिल, एक नाम जो हर घर दी पहचान बनिया, आकाशवाणी।

जी हाँ दोस्तों, मिति 11 मई 2026 दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत तुसी सुनोगे रेडियो दे 90 साल सुनहरी दौर नू समर्पित एक विशेष प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देशन सीमा मेहरा, ममता अरोड़ा ते जसविंदर कौर। आओ राल मनाइए आकाशवाणी दे 90 सालां दा सुनहरी युग साडी इस विशेष पेशकश दे नाल।

0: वाचक निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बराल। समय याद रखियो 11 मई दिन सोमवार शामी 5 बजे।
1: श्रोतियां नूं इक सूचना दे दईए कि कल सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे दे विच विशा होएगा बच्चां दा यौन शोषण, इन्हां दे होर अधिकार अते उन्हां नाल जुड़े कानून। इस विशे नाल संबंधित जानकारी देणगे मैडम रवनीत कौर धालीवाल, जिला बाल सुरक्षा अफसर बठिंडा। मेजबानी करनगे प्रोग्राम दी मनदीप रजौरा। सुनना ना भुलना श्रोतियो, कल सवेरे 10 बजे प्रोग्राम निक्के निक्के तारे तहत। एसी जी संदेश एसी सोचना तुसी आनंद मान रहे हो, किरण पाल दे नाल प्रोग्राम चल रहा है हैलो फरमाइश दे विच सिलसिला। फोन मिलाओ जी, ते फोन मिल चुका है जी, कौन पहुंचे ने? हैलो
2: हैलो किरण पाल मैडम जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: जिला लुधियाना पुरानी मंडी मुलापुर जाखा तो राजेश जैन बिट्टू बोल रहे जी।
1: राजेश जैन जी, आज आज परिवार नाल ही लंघे हो।
2: हां जी, रसगुल्ला बर्गर मेरे कोले बैठे।
1: रसगुल्ला बर्गर नाल जी, गीत केड़ा हो जे?
2: गीत है जी, आज की फिल्म दा कुमार सानू साहब दा सुपर हिट कुछ सॉन्ग है जी, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे।
1: नहीं मैं पूछदी भी नहीं भी की आलम, रहण दियो। आपा गीत नाल गीत सुनदे हैं। शुक्रिया जी,
2: प्रोग्राम पेश कर दे तुसी, परमात्मा तुहानू तरक्की
1: बख्शे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आनंद माणो इस गीत दा।

0: दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है।
1: जी हां श्रोतियों, इना कहानियां दे विच इक खूबसूरत जी कहानी ते प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने जो तुहाडे दिल दे काफी करीब है।
0: अल्लाह दुहाई है दुहाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है।
1: समिती 9 मई नू शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो की आधारित होएगा फिल्म 14वीं का चांद ते।

0: प्रोग्राम पेश करेंगे सुधा। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना, मिति 9 मई शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।
1: जी श्रोतियो, तुसी आनंद मानियो जी किरण पाल दे नाल प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच सिलसिला फोन मिलाओ जी दा। हैलो
2: हैलो,
1: हां जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैम
1: जी, किथो बोल रहे हो?
2: धर्मवीर बोल रहा हूं, मंडेड़ा वाली से।
1: धर्मवीर जी स्वागत है जी तुहाडा,
2: धन्यवाद मैम।
1: गीत केड़ा सुनाइए?
2: बरसात फिल्म का सुना रहे हैं।
1: बरसात फिल्म दे विचो तो अनु सुना रहे हैं जी, प्यारा जा गीत। फोन करने दे लिए बहुत बहुत शुक्रिया तोड़ा।
2: धन्यवाद मैम।

0: सुरा नू कर कर पहुंचाया।
1: मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
0: अते जानकारी दी दुनिया नाल जोड़िया। आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होन ते आकाशवाणी बठिंडा लेके आ रहा है एक खास पेशकश। मिति 11 मई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे सजरी सवेर दे तहत प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 11 मई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

0: in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचे

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा

0: योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बराड़। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 3 मई दिन एतवार शाम 5 बजे प्रोग्राम बातां पुराने पंजाब दियां। आवाजा दा ओ सफर जो पीढ़ियां तो दिलां नाल जुड़िया रहा, जी रेडियो। जिसने खुशियां वंडियां।

वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 11 मई दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

प्रोग्राम पेश करेंगे सुधा। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। सुनना ना पोला मिति 9 मई शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने। अल्ला तुहा।

0: वाचक निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बराल। समय याद रखियो 11 मई दिन सोमवार शामी 5 बजे।
1: कल सवेरे 10 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम निके निके तारे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सके। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू।

यशवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
4: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मुनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है?
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या? तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश।

0: कौन है वो सैनिक?
1: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
0: मेरा डुप्लीकेट?
1: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम

0: दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मुहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवाल नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम, सिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा

0: बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
1: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
0: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते। जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
1: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: हाँ हाँ, रुपए लाओ लाओ लाओ।
1: सिंगारम, ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ? देखना ये श्रृंगारम के

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा

0: लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: अरे अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? श्रृंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया ओ, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम
0: अरे अरे
1: से
0: अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है। और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीनी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जीजी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: श्रृंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू तो क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ।

0: रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: मेरे सामने वो बदमाश शंकरम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करो? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो?
3: अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
3: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
3: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है?
2: देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा, ये बात है?
0: छोड़ दे।
4: चेहरा बन गया, तुझे मैं छोड़ समा डालूंगा।
1: अरे वाह, अरे दागी ने मार डाला। अरे बचाओ, बचाओ।
4: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
4: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से। अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चलो हाल उधर कर दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
1: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
5: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
5: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
5: हाँ हमारे

0: यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
1: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने श्रृंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
0: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
1: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं और वो बदमाश श्रृंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
0: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
1: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
0: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
1: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
0: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला, मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
2: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
3: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: है ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
4: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी।
2: जी,
3: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ।
3: और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें।
3: जी,
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला?
3: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
2: जी,
3: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
2: हाँ।
3: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
2: हाँ।
3: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके।
2: जी, जी, जी।
3: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
2: हाँ।
3: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
2: वाह वाह
3: जी।
2: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
3: पहला शो 1975 14 अप्रैल
2: जी,
3: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
2: क्या बात है
3: जी,
2: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
3: मुहूर्त माना, हमारे एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
2: क्या बात है
3: जी।
2: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
3: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
2: जी।
3: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई।
2: अच्छा,
3: मुझे बोली
2: अच्छा।
3: तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी। बहुत मजा आया उससे, बच्चों

0: से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
0: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फेहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये, इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है,
0: राइट?
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे, हाँ? वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: क्या बात,
0: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत
1: अच्छा। अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
0: ऐसे मैं मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश करती थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए उसकी झलक, उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: जी, तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव में
1: हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब
0: गाया।
1: चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो, जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके, अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह।
1: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके,
0: संगीत शारदा।
1: संगीत शारदा।
0: जी जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी,
0: हाँ।
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी, जी,
1: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के,
0: ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी
0: अच्छा।
1: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ। बहुत मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है।
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती
1: मंच पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
2: इस
1: नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटे सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन

0: करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद। हाँ। फिल्म डिवीजन भी चालू है कभी पता नहीं। हाँ। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
0: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में BA किया मैंने म्यूजिक लेके।
1: जी जी।
0: तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें BA तक। और BA का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की।
1: हाँ।
0: तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
0: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
0: और 58 को शादी हो गई 16 साल की।
1: हाँ।
0: तो 58 को शादी हो गई। फिर मैं ऐसे घर में, तो BA हो गया मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
0: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
1: जी
0: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, MA करो। MA में इंटर म्यूजिक था SNDT में।
1: हाँ,
0: तो उनकी बदौलत मैं MA करने के लिए गई।
1: वाह।
0: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी
1: हाँ,
0: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी
1: अच्छा।
0: बच्चों को।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: 62 में मैंने MA किया फिर।
1: वाह।
0: और फिर MA किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जाप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस
1: जी
0: क्लब का।
1: जी
0: तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या। हमने चलेगी, कूदते
1: दौड़ेगी।
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला।
1: क्या
0: 3 महीने
1: बात,
0: का वो टूर था हमारा
1: क्या बात।
0: और 2 बेटियां, एक
1: हाँ हाँ
0: 4 साल
1: हाँ
0: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं
1: हाँ
0: बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
1: हाँ हाँ
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी।
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहां जाके
1: जी।
0: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
1: अच्छा,
0: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे।
1: वाह,
0: बहुत मजा आया
1: क्या बात
0: टूर
1: है।
0: में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को
0: और
1: आपने याद
0: तलत
1: किया
0: साहब तो
1: तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने
0: ओके
1: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे।
1: जी
0: हाँ
1: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी,
1: जी
0: फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने
1: पहले
0: वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गई?
1: वशिष्ठ तरस साहब के साथ गए,
0: हाँ
1: फिर उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था
0: जी
1: फिल्मों के
0: जी
1: लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम, तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, तो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे
0: अच्छा
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर सब गायक कलाकार लेजेंड्स है, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमते, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
0: जी
1: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि आपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों सामने से सुनते बैठू,
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात है।
1: इस बारे
0: मगर
1: रफी साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं गाया
0: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन
1: जरूर
0: सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों को टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी,
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी,
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी,
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू, एक एक छोटा छोटा
0: अच्छा,
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ,
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में,
0: अच्छा,
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो, वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अब मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो,
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है,
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके
0: जी
1: उसके साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अल्का
0: अच्छा,
1: याग्निक का एक गाना

0: शायद
1: हाँ
0: अल्कायनिक का।
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे,
1: मोहम्मद के धागे दम लगाकर हैशा इस फिल्म का
0: दम
1: गाना
0: लगा के
1: है।
0: हैशा
1: जी
0: उसका
1: जी
0: अल्कायनिक।
1: गीत लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ
1: हारमोनियम पे,
0: मोह
1: तो
0: मोह के है। और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: तरह
0: है,
1: से
0: ये
1: गाते थे
0: आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: या
0: क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं किया आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ हाँ
1: गीता दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है,
0: आशा जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या
0: हाँ
1: उनकी उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों, कि लता जी के अरेंज में ही मैं

0: बिल्कुल, उस
1: फिर
0: जिद
1: वो
0: का
1: ऊपर
0: कुछ
1: जाके फिर वो
0: जी
1: आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी
1: हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो गायकों के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए। कुछ सीखो अच्छी तरह से।

0: हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
1: हाँ
0: नॉट। मैं
1: हाँ
0: अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
1: जी
0: समझो
1: जी
0: वैरायटीज, वो
1: हाँ
0: करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
1: जी
0: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
1: जो
0: वो
1: ओरिजिनल है
0: हिसाब
1: पहले वो तो
0: वो
1: गाओ।
0: तो गाओ,
1: हाँ
0: नकल ना नहीं आती उसमें,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है,
1: हाँ
0: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
1: हाँ।
0: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
1: खैर
0: अभी।
1: बिल्कुल सही।
0: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो ने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: क्यों करते थे इतना,
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही गाते थे
1: सही बात, बिल्कुल
0: ना।
1: सही। मन्नदा की बात करते हैं,
0: जी
1: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
0: मन्नादा के
1: किया,
0: साथ, हाँ
1: संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
0: श्री रामचंद्र।
1: तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
0: एक शो किया बड़ौदा में,
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ
0: बड़ौदा में मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
1: हाँ
0: तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
1: हाँ हाँ
0: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
1: जी जी
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो
1: हाँ
0: फ्लैट लगेगा और उस
1: जी जी
0: भाव नहीं आएंगे उसमें,
1: हाँ
0: तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपने आवाज में,
1: हाँ
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसा ऐसे आघात करते जाओ, और
1: अच्छा
0: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
1: ओहो
0: रियाज करके,
1: क्या बात।
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
1: हाँ
0: कि ज्यादा नहीं करना,
1: हाँ
0: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही
1: अच्छा
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: हाँ
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बाम्बू चा वना छ झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
1: हाँ
0: शील सजणे सजणे
1: हाँ
0: माझाच पाठी,
1: बिल्कुल
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी।
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा वो।
0: बहुत 3 बार हुआ टिक, 4 बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
1: जी जी
0: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
1: हाँ हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: बराबर ये
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के।
0: लाइन
1: क्यों
0: में,
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें?
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी।
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54, जिसे मॉड्यूलेशन
1: हाँ
0: कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
1: जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर

0: आहा स्वप्नाचा झुला ला ला ला ला झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह
0: बहुत अच्छे, थोड़ा सुना दो.

0: क्या बात,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के आ जाता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी लिखावटी गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी
1: हंसते जख्म,
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 major surgeries, उसमें 2 heart बाईपास, 2 aneurysm करके है और 2 kidney stone की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ नहीं था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी, लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इत्तला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था। तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है

0: हाँ
1: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए
0: क्या बात है।
1: जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है
0: हाँ,
1: वो
0: इतना
1: मैं लगा
0: सपोर्ट,
1: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को
0: बिल्कुल
1: देगा।
0: बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं,
1: बहुत
0: क्या बात।
1: बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूं।
0: जी।
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए,
0: जी
1: कंपटीशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए,
0: हाँ
1: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब
0: हाँ
1: साथ मिला,
0: जी।
1: उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए।
0: हाँ
1: बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए,
0: जी।
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का,
0: जी
1: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी
0: जी
1: कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
0: वाह वाह।
1: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के
0: हाँ,
1: उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
0: क्या बात है। परिवार की बात चली है तो
1: जी,
0: आपकी अगली पीढ़ी में,
1: मेरी
0: आपके
1: दोनों
0: बच्चों
1: बेटियां
0: में
1: मेरे साथ
0: लाग,
1: गाती थी
0: अच्छा
1: शो में
0: हाँ
1: शुरू
0: हाँ
1: से,
0: हाँ
1: मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरे मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, वो
0: अच्छा
1: छोटी थी दोनों,
0: हाँ हाँ
1: तो उनका जाते हैं उनके पास, मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गया,
0: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते हुए
1: उन्होंने
0: देखा
1: गाते
0: सुना
1: देखा
0: है
1: तो उन्होंने
0: तो
1: वो
0: उनके
1: भी
0: अंदर वो
1: गाती
0: अपने
1: थी
0: आप,
1: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे
0: अरे
1: नहीं
0: वाह
1: कि
0: क्या
1: कैसा
0: बात
1: क्यों
0: है,
1: आए ऐसे
0: क्या
1: ऐसे
0: बात
1: नहीं। और
0: है।
1: हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी, मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी
0: हाँ
1: ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे,
0: क्या
1: तो
0: बात
1: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं,
0: है
1: हमारी बहन नहीं, बहन नहीं ये।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: वह
0: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
1: बहुत बड़ा
0: क्या बात। जी जी जी जी
1: कॉम्प्लीमेंट।
0: अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा,
1: हाँ,
0: ऐसा
1: हम
0: कोई
1: लोग
0: गाना।
1: तीन डुएट भी गाते थे,
0: जी।
1: वो मन क्यों बहका रे बहका वो है,
0: ओहो क्या बात
1: फिर
0: है,
1: कजरा मोहब्बत वाला वो है,
0: हाँ
1: फिर
0: हाँ
1: अन्ना जी का अपलम चपलम, उस पे डांस भी
0: क्या
1: होता
0: बात
1: था
0: है,
1: मेरे
0: क्या
1: शो
0: बात
1: में,
0: है,
1: ऐसे सब डुएट डुगाने हम लोग ने, तो
0: क्या।
1: उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे।
0: वाह
1: हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो, पंख
0: अच्छा
1: होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
0: अच्छा
1: में,
0: अच्छा अच्छा
1: बहुत लोगों को पसंद
0: तो क्यों
1: आता
0: ना
1: था।
0: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
1: अरे
0: को।
1: बाप रे।
0: हाँ? रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती। विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: सुनिए,
6: कहिए,
8: सुनिए एक खुशखबरी।
6: कहिए ना।
8: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
8: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के

फिर जिचर महाराज दा पांच पौतक चोला रहा। आप पोथी साहिब नू पीड़े उपर स्थान देंदे ते आप अदब वजो कोल पुंजे नीवी थां सौंदे रहे। इउं गुरु ग्रंथ साहिब नू इक तरह नाल गुरता तां उदों ही प्राप्त हो गई सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तां पावन बीड़ विच गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी शामिल करके इस नू मौजूदा रूप दिता। फिर ज्योति जोत समाउण समय उन्हां नियमित ढंग नाल गुरता दी मोहर किसी देहधारी जान शीन दी थां गुरु ग्रंथ साहिब ते ला के देहधारी गुरता दा सिलसिला समाप्त कर दिता। इस दे बावजूद कुछ संप्रदावां अजिहियां हन जो हाले भी देहधारी गुरु नूं प्रवान कर दिया हन ते गुरता दा सिलसिला दसम पातशाह नाल खत्म होया नहीं मानदियां। इसलिए ओ गुरु गोबिंद सिंह जी वालों गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरु टिके जान नूं प्रवान नहीं कर दिया। हालांकि भरोसेयोग समकाली लिखती सबूत इस तथ्य दे मौजूद हन। इन्हां विचों सब तों प्रमाणिक दस्तावेज पट वहियां दी है। पट नरबद सिंह पुत्र केसो सिंह जो भाई भीखे दी बंसावली विचों सी 6 अक्तूबर 1708 नूं अपनी वही विच इउं लिखते हन। गुरु गोबिंद सिंह जी महल दसवां बेटा गुरु तेग बहादुर जी का पोता, गुरु हर गोबिंद जी का पर पोता, गुरु अर्जन देव जी का बंस, गुरु रामदास जी की सूरज बंसी गोसल गोतर सोडी खत्री बासी आनंदपुर परगना कहलूर मुकाम नांदेड़ तट गोदावरी देश दखन सम्मत 1765 कार्तिक मास की चौथ शुक्ल पखे बुधवार के दियो भाई दया सिंह से बचन होया सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब ले आओ। बचन पाए दया सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब ले आए। गुरु जी ने 5 पैसे नारियल अगे पेंटा रख के मथा टेकया। सरबत संगत से कहा मेरा हुक्म है मेरी जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जानना। जो सिख जानेगा तिसकी काल थाए।

पाएगी। गुरु उसकी बहौड़ी करेगा। सत कर मानना। पट वहिया तो छुट गुरु ग्रंथ साहिब नू गुरता दिते जान ते देहधारी गुरता दी समाप्ति दा प्रमाण होर इतिहासिक स्रोतां तो भी प्राप्त है।

0: माता सुंदरी जी दे इस हुक्मनामे विच लिखिया है,
1: एकंकार वाहिगुरु जी की फतेह।
0: श्री अकाल पुरख जी का खालसा यक रंग, जिन्ना डिठिया वाहिगुरु चित आवे। सर्वत खालसा वाहिगुरु अकाल पुरख का, वाहिगुरु जी की फतेह वचनी। वाहिगुरु अकाल पुरख जी हर दम चित आवे, सुख होए खालसा जी का बोल बाला होए। गुरु गुरु जपना वाहिगुरु अंग संग होए, फजल करके रखिया होवेगी। खालसा श्री वाहिगुरु जी का सुचेत विवेक बुद्ध चाहिए, जो सिवाय अकाल पुरख दूजे न जाने नहीं। दसम पातशाहियां तक जामे पैदे, यारवी बारवी बंदा चौबंदा, अजीता वगैरा ते इतकाद लै आवना हत्या है। होर हत्या गुरु जपन नाल दूर होसन, पर ए हत्या गुना बख्शियेगा नहीं, जो मनुख के

जामे उपर एतकाद करेंगे। खालसा जी तुसा सिवाय अकाल दूजे नो मनना नाही। शब्द दसवें पाशाही तक खोजना। शब्द खोज ए कर लहे नानक ताका दास। गुरु का निवास शब्द विच है। गुरु मैं आप समोए शब्द बरताया। जिया अंदर ज्यो शब्द है जित सह मिलावा होए। वाहिगुरु जी की फतेह। होर भी कई प्रमाण मिलदे हन जिहा के रहतनामिया विच ते देव शर्मा रचित नानक चंद्रोदय महाकाव्यम नामक पुरातन संस्कृत पुस्तक दे खरडे विच प्राप्त हन। ऐसे अकट लिखते इतिहासकार प्रमाणा दे हुंदिया गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरता तो इनकार जेकर अज्ञान ने ता होर की है। विश्व दियां दूजियां प्रमाणिक धर्म पुस्तकां दे टाकरे गुरु ग्रंथ साहिब विच कई पक्खां तो सिर मौरता नजर आउंदी है। एह इको एक धर्म पुस्तक है जिस विच धार्मिक आगुआं दी रचना मौलिक रूप विच मौजूद है। एह महान पुस्तक केवल अकाल पुरख दी आराधना है ते सिफत सना नाल भरपूर है। तवारीखी घटनावां जीवन वृतांत इसका विषय नहीं ते ना ही ए कोई हदायतनामा जा रहतनामा ही है। देवी प्राप्ति दे अंतम विकास दे नुक्ते तो वाचिया इस पुस्तक विचली अध्यात्मक दृष्टि शब्द नाल पूरी तरह एक सुर है। ए एक सर्व सांझी पुस्तक है जिस अगे हिंदू मुसलमान सिख सब सिर चुका सकते ने। इस पुस्तक अगे सिर चुकाउन वाले चो ऊच नीच दा अभिमान सहजे ही चढ़न लगदा है। इसलिए जेकर ए कहा जावे कि ए ग्रंथ धर्म ग्रंथां दी सफ विचों अव्वल है ता ए वाक अतिकथनी नहीं गर्दान्या जाएगा। इस पुस्तक दा आदि ग्रंथ नाम जापदा है इस पक्षों भी उचित है। इस विचले बाणी दे रचयिता केवल पंजाब विचों ही नहीं सन सारे हिंदुस्तान चो चुने गए। ओ केवल सतगुरां दे समकाली नहीं सन पूरियां पंज सदियां दी अध्यात्मक पुनर्जागृति दे प्रतिनिधि सन। इओ इस धर्म ग्रंथ दी महानता एक तरह दी भौगोलिक ते इतिहासक महानता समेटी बैठी है।

0: दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है।
1: जी हां श्रोतियो, इना कहानियां दे विच इक खूबसूरत जी कहानी ते प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने जो तुहाडे दिल दे काफी करीब है।
0: अल्लाह दुहाई है दुहाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है।
1: समिति 9 मई नू शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत तुसी सुनोगे साडा हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो की आधारित होएगा फिल्म 14वीं का चांद।

0: प्रोग्राम पेश करेंगे सुधा। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा। सुनना ना पोला मिति 9 मई शाम 7 बजे प्रोग्राम शाम सुहानी तहत हफ्तावारी सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने।
1: श्रोतियो इस गीत नाल ही अपने दोस्त लवलीन सहदेवा नू प्रोग्राम गल्लां चो गल खत्म करन दी आग्या देओ।

0: रोकथाम बारे कानून 2002 दियां धारावां तहत कीती गई सी। एजेंसी ने किया कि यह मामला 100 करोड़ रुपए तो वे मोबाइल फोना की जाली GST खरीदारी ते बाद विच दुबई तो भारत नू राउंड ट्रिप नजायज फंडा नू बरामद करके कथित तौर ते वड्डे पद्धर ते मनी लॉन्ड्रिंग नाल संबंधित है। ईडी ने कथित तौर पर दिल्ली स्थित गैर मौजूद फर्मा तो जाली इनपुट टैक्स क्रैडिट बरामद क्रैडिट ते GST रिफंड ते ड्यूटी ड्रॉप बॉक लाभा दा दावा करने लई कई जाली GST खरीद बिल प्राप्त किए ने। एजेंसी मुताबिक लैन देन कारण सरकारी खजाने नू काफी नुकसान होया ते नतीजे वजो गलत निजी फायदे पहुंचे। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां अथॉरिटी नालसा वल्लों अज देश भर विच इस साल की दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लाई गई। इस संबंध विच पंजाब भर विच भी लोक अदालतां लाईआं गईआं। फरीदकोट विच जिले दीआं अदालतां विच कौमी लोक अदालत लाई गई। इस लोक अदालत विच 12,491 केसां विचों 8,368 केसां दा निपटारा कीता गया। श्री मुकतसर साहिब विखे लगी नैशनल लोक अदालत विच करीब 37,350 केसां दा निपटारा करवाया गया। जिला कचहरियां गुरदासपुर विखे लगी नैशनल लोक अदालत विच 12,885 केसां दा निपटारा कराया गया। गुरदासपुर दे कानूनी सेवा अथॉरिटी बारे सकत्तर हरप्रीत सिंह ने वधेरे जानकारी दिंदिया दस्या।
1: इस लोक अदालत विच गुरदासपुर दे विच असीं 12 बेंच बनाए ने ते बटाला दे विच 8 बेंच हैगे ने। टोटल 13,050 केस टेकअप हो रहे ने इन्हां बेंचां दे कोल। इन्हां विच बैंकां दे रिकवरी दे केस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दे केसेस ते जिहड़े हैगे ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम दे, ट्रैफिक चलान, ये सारे केसेस टेकअप हो रहे ने। रेगुलर कोर्टां दे विच जिहड़े पेंडिंग केसेस आए ने वह भी टेकअप हो रहे ने। उन्हां दे मसले नूं सुलझा के जल्दी ते फ्री न्याय दे रहे हैं।
0: फाजिलका विखे नैशनल लोक अदालत विच 14,279 केसां दा निपटारा कीता गया। पठानकोट विखे राष्ट्रीय लोक अदालत विच 11,198 केस पेश कीते गए, जिन्हां विचों 10,345 दा निपटारा कीता गया। इस बारे दसदियां पठानकोट दे डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज रजनीश ने दस्या।
2: अज असी नैशनल लोक अदालत होल्ड की पठानकोट, जिदे च असी 7 बेंच ऑर्गेनाइज किए सी, जी एक बेंच रेवेन्यू कोर्ट का भी सी। टोटल 11,198 केस असी टेकअप किए। जिहड़ा लोक अदालत दे फैसले हुंदे ओह फाइनल फैसला हुंदा, उहदे अगे कोई अपील नहीं हुंदी, केस इत्थे ही खत्म हो जांदा ते इहदे सारे केस दिंदे आ।
0: मानसा विच 22,557 केसां दा निपटारा लोक अदालत च कीता गया। जलंधर विच 39,920 केसां दा आपसी सहमति नाल निपटारा कीता गया। कपूरथला विच भी लोक अदालत ला के 6,503 केसां दा निपटारा कीता गया। आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे होने मनाने लई राष्ट्रीय लोक प्रसारक के जलंधर स्टेशन ने अज इत्थे वॉकेथॉन कराई। सैकड़े स्रोतिया, आकाशवाणी के स्टाफ मैंबर, एंकर, प्रोग्राम पेशकर्तावान ने इस विच हिस्सा लिया। इसे तरह का वॉकेथॉन पटियाला स्टेशन विखे भी करवाया गया। जलंधर विच इस नूं आकाशवाणी पंजाब के कलस्टर हैड ते डिप्टी डायरेक्टर जनरल DDG रणजीत मीना और DDG जलंधर दूरदर्शन RL जारंगल ने न्यूज़ अते प्रोग्राम मुखिया नाल वॉकेथॉन नूं हरी झंडी दे के रवाना कीता। वॉकेथॉन नूं आकाशवाणी FM स्टूडियो नाल सीधा जोड़िया गया। स्रोतिया, साबक मुलाजमां अते होरां ने FM स्टूडियो विच अपने अनुभव सांझे कीते ते एंकरां वल्लों बेहतरीन गीत पेश कीते गए। पेश एक रिपोर्ट।
3: पंजाब विच आकाशवाणी ने हरी क्रांति दौरान एक अहम भूमिका निभाई है अते अज भी खेतीबाड़ी ते विशेष तौर ते तैयार किए गए प्रोग्रामां राहीं किसानां नूं जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। अज दे वॉकाथॉन दौरान आकाशवाणी दे स्रोतियां, साबका मुलाजमां अते होरनां ने FM स्टूडियो विच एंकरां वल्लों वजाए जा रहे शानदार गीतां विचकार सिद्धे प्रसारण राहीं अपने अनुभव सांझे कीते। वॉकाथॉन दा माहौल होर भी जीवंत हो गया जदों सारे लोग वख-वख गीतां दीआं धुनां ते नच्चण लगे। बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए दे अपने आदर्शां ते खरा उतरदे होए इह राष्ट्रीय प्रसारक पिछले 9 दहाकियां तों वख-वख प्रोग्रामां अते न्यूज़ बुलेटिनां राहीं जानकारी, सिक्ख्या अते मनोरंजन प्रदान करके देश दी सेवा कर रिहा है। आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तों मैं राजेश बाली।
0: आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी में आकाशवाणी पटियाला वालों भी एक विशेष वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। प्रोग्राम मुखी मोहम्मद इम्तियाज ने जानकारी देते दसिया कि इस वॉकेथॉन की रस्मी शुरुआत आकाशवाणी वालों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को साकार करदिया एक छोटी बच्ची अनाया वालों हरी झंडी दे के कराई गई। एक अरसे तो आकाशवाणी के स्रोता रहे बंसी लाल ने कहा,
4: बड़ा अच्छा लगा जी, बहुत प्यार मिला जी। आकाशवाणी जो है बड़ी सलाह देते हैं यहाँ लोगों को रहने के लिए, पानी के बारे में भी, रोड के ट्रैफिक के बारे में, हर एक चीज की सलाह देते हैं यहाँ। बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बोलबाणी है बहना की भी और भाइयों की।

0: पतनबाजी आपको हमें इकट्ठा होने का मौका मिला।
1: होरना तो इलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे विद्यार्थियों ते अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने भी वड्डी गिणती में शमूलियत करके समागम नूं यादगार बनाया। 8 जून 1936 नूं भारतीय राज प्रसारण सेवा का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो AIR रखा गया सी। ए दिन देश के सभ्याचारक सूचना ते प्रसारण इतिहास में एक खास पल नूं दर्शाउंदा है जदों पीढ़ियां तक इसकी गूंज लई इक आवाज पैदा हुई। आजादी तो बाद AIR ने तेजी नाल प्रसार किया ते 1956 विच आकाशवाणी नाम अपनाया। यह राष्ट्र का एक अजिहा विरसा है जो आने वाली पीढ़ियां तक जिंदा रहेगा। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RN जलंधर। पंजाब के सिंचाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम तहत रोपड़ नहरी नेटवर्क का पानी हुण टेलां ते पैंदे पिंडां तक भी पहुंच गया है, जो ना किसानों लई एक वड्डी तब्दीली है जो लंबे समय तो जमीन हेठले अनिश्चित पानी ते निर्भर सन। पंजाब के जल स्रोत मंत्री श्री वरिंदर कुमार गोयल ने दस्या कि 2025-26 रोपड़ नहरी नेटवर्क हेठ सिंचाई रकबा 29,488 एकड़ तो वध के 85,447 एकड़ हो गया है। इस तहत 3,882 एकड़ हो रकबा शामिल किया जा रहा है, जिस नाल कुल खेतर 99,329 एकड़ तक पहुंचेगा, जो करीब 200% के वाधे को दर्शाता है। तरन तारण पुलिस के CIA स्टाफ ने एक अफरीकी औरत को 3 किलो हेरोइन और 1 कार समेत गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। जब्त की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपये दसी जा रही है। इस संबंध में तरन तारण पुलिस ने औरत विरुद्ध मामला दर्ज करके अगलेरी जांच शुरू कर दी है। होशियारपुर के टांडा म्याणी रोड से अड्डा पुल पुख्ता नेड़े एक बेकाबू ट्रक ने एक औरत समेत 3 लोगों को कुचल दिता। हादसे में हुण तक 2 लोगों की मौत हो गई है। तीजे व्यक्ति जिसकी हालत नाजुक है वो टांडा सिविल हस्पताल में मुढ़ली सहायता तो बाद अमृतसर रैफर कर दिता गया है। मृतका की पछाण हरभजन कौर वासी म्याणी ते अश्विनी कुमार वजों हुई है। वधेरे जानकारी देंदिया थाणा मुखी गुरजिंदर सिंह नागरा ने दस्या
2: एक ट्रक जिहड़ा खाली सीगा जिहड़ा कणक लोड करने वास्ते जा रहा सीगा मंडी दे विच, इक तां पहलां जी एक बंदा अपनी जी सड़क क्रॉस कर रहा सी, ट्रक ने जिहड़ा अपनी चपेट च लिया, अश्विनी कुमार जिहड़े उन्हां दी मौके ते मौत हो गई। उस तों बाद फिर जो ट्रक भजाया ते अगे जाके एक होर ने जिहड़ा हरभजन कौर नां दी लेडी है जिहड़ी म्याणी दे रहिण वाले ने उन्हां दी भी ट्रक थल्ले आउण करके जिहड़ी डैथ होई है। इस तों इलावा होर वी उहने इक दे व्हीकल दे विच वी जिहड़ा रैश ड्राइविंग करदिआं मतलब ट्रक ने भजाया दसूआ साइड नूं, जल्दी उहनूं राउंड अप करके जिहड़े वारस ने जी उहनां दे बयानां ते असीं जिहड़ी इहदी कार्रवाई कर रहे हैं।
1: IPL क्रिकेट विच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम च राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। पंजाब दे सनत मंत्री संजीव अरोड़ा नूं अज मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच ईडी वल्लों चंडीगढ़ स्थित उन्हां दी रिहायश तों गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां अथॉरिटी नालसा वल्लों अज देश भर विच इस साल दी दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लाई गई। पंजाब भर च वी लोक अदालतां लाईआं गईआं। आकाशवाणी दी स्थापना दे 90 साल पूरे होण नूं मनाउण लई राष्ट्रीय लोक प्रसारक ते जलंधर ते पटियाला स्टेशनां ने अज वाकथॉन कराई। होशियारपुर च एक बेकाबू ट्रक हादसे विच इक औरत समेत 3 लोगों की मौत। ते IPL क्रिकेट विच अज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल। इस दे नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
3: हुणे तुसीं प्रादेशिक खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र राहीं सुन रहे सी। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साढ़े स्टूडियो की कड़ी मुताबिक समा हो रहा है शाम के 6:30 मिनट 31 सैकेंड। पेश है युवा साथियों का प्रोग्राम युवाणी।

0: युवा साथियों नमस्कार, तुहाड़ा दोस्त लवलीन सचदेवा प्रोग्राम युवाणी लैके तुहाड़ी सेवा विच हाजिर है। श्रोतियो, अज इस प्रोग्राम तहत तुसी सुनो सिलसिला मेरियां गल्लां मेरे गीत। ये प्रोग्राम पेश करनगे निशांत कुमार ठाकुर। उस तो पहला कुछ संदेश।
1: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेली नो

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ। 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਕਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟੌਪਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੱਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ, ਸਮਾਲ ਬੈਚਸ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9877132405।
3: पेश है सबका फेवरेट
4: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
3: पेश है सबका फेवरेट
4: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
5: सत श्री अकाल, प्रोग्राम मेरिया गल्लां मेरे गीत दे विच मैं निशांत कुमार ठाकुर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। अज इस प्रोग्राम दे विच मैं अपने निजी जिंदगी दे बारे अते नाल ही नाल अपने ते तुहाडे मन पसंदीदा गीत भी सुनांगे। जी साथियों, प्रोग्राम दी शुरुआत विच आपां एक प्यारा जिहा गीत सुनदे हाँ।

गया, मैं कदों चढ़ाई पूरी कर ली। उत्थे दा नज़ारा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत सी गया। असी सारे ने माता जी के दर्शन किए, तो उस उत्ते होर चढ़ाई की, तो भैरव बाबा के भी दर्शन किए। कहते हैं वैष्णो माता के दर्शन करने तो बाद भैरव बाबा के भी दर्शन करने बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे है। अते साथियों, मैनू इन्ना ट्रैवलिंग का शौक है ना, हुण भी मैं अपने बचपन के साथियों नू फोन लाया सीगा, सारे ने इकट्ठे प्लैन बनाया कि इस बार जून च कितें घूमन जावांगे शिमला। तो साथियों, ये सब गल्लां तां हुंदियां रहणगियां। तो हुण मैं गल करदा अपने करियर के बारे। फिलहाल मैं यादविंद्रा कॉलेज विचों बीकॉम सैकेंड ईयर विच आ। मैं अपने आप नू ना फ्यूचर विच बैंक मैनेजर के पोस्ट ते वेखना चाहुंदा हाँ, जिस कारण मैं बहुत मेहनत करदा, अपनी पढ़ाई ते भी ध्यान दिंदा हाँ, खेडां दे नाल नाल। मेरी लाइफ विच ना सब तो वड्डा रोल ना मेरे माता जी का, मेरे भरा का रोल है, जिन्ना करके ना मैं अज आकाशवाणी FM रेडियो के प्लेटफॉर्म तो बोल रहा हाँ। मैं अज कॉलेज विच भी हाँ ना मेरे माता जी करके है, क्योंकि अगर मेरे माता जी स्ट्रगल ना करते ना तो मैं अज इत्थे तक नहीं पहुँच सकता सी। मेरे माता जी ने हमेशा मैनू सपोर्ट किया, मैनू हमेशा मोटिवेट किया, मैनू हमेशा उन्होंने आए कहा है भी बेटा तू अगे बद, तू पढ़ लिख, जिन्ना पढ़ना उन्ना पढ़, मैं हैगी हैं, मैं तेन पढ़ावगी, अज तू कामयाब बन, बस मैं तेन कामयाब इंसान देखना चाहनी हाँ। अते मेरे भरा का भी मेरे लाइफ विच ना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मेरी हर थान से सपोर्ट की है। अगर मैं कोई भी परेशानी विच फस जाना हाँ, हमेशा मैनू उस परेशानी तो बाहर करते हैं, हमेशा मैनू मोटिवेट करते हैं, तो मैनू हमेशा सही राह की दिशा दिखाते हैं भी नहीं तू ये काम इस तरीके नाल भी कर सकता हाँ तू। तो मेरा लाइफ का ना एक ही एम है कि ना मैं एक लाइफ विच ना एक कामयाब इंसान बना, तो अपने माता जी ने ना कहां बस माता जी हुण तुसी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया, हुण मेरी वारी, हुण तुसी आराम करो, तो मैं तुहानू सारी सुख सुविधा। तो साथियों, अखीर विच मैं अपने नाल साथियों लई यही कहना चाहवांगा कि आनी ओह समा है जिते मेहनत ते सबर भविख नू सोने वर्गा बना दिंदे हन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ। ਨਮਸਕਾਰ।

0: युवा साथियों, हुने तुसी प्रोग्राम युवाणी तहत सुन रहे सी सिलसिला मेरिया गल्ला मेरे गीत। अजे प्रोग्राम पेश कर रहे सन निशांत ठाकुर।
1: नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी आवाज दी यात्रा लई जो 90 साल पुरानी है पर अजे भी तड़कदी है।
2: आवाज हमारी
1: 1936 तो लेके आज तक एक आवाज जो बनी भरोसा, एक मंच जिसने जोड़े दिल, एक नाम जो हर घर दी पहचान बनिया, आकाशवाणी।

जी हाँ दोस्तों, मिति 11 मई 2026 दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत तुसी सुनोगे रेडियो दे 90 साला सुनहरी दौर नू समर्पित एक विशेष प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देशन सीमा मेहरा, ममता अरोड़ा ते जसविंदर कौर। आओ राल मनाइए आकाशवाणी दे 90 साल दा सुनहरी युग साडी इस विशेष पेशकश दे नाल।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार, तुहाडा दोस्त लवलीन सहदेवा प्रोग्राम श्याम सुहानी लैके तुहाडी सेवा विच हाजिर है। श्रोतियो, अज इस प्रोग्राम तहत तुसीं सुनो सिलसिला फिल्मी अफसाने और ताराने, जो आधारित है हिंदी फिल्म चौदहवीं का चांद। अज प्रोग्राम पेश करेंगे सुधा। उस तो पहला कुछ संदेश।
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
2: पेश है सबका फेवरेट
3: अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, चंदन तेल एवं खस तेल से निर्मित हर्बल शरबत मौज बहार, तन मन को ताजा कर जाए।
4: जी श्रोतियों नमस्कार।

नमस्कार, प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने लेके हाजर हां मैं सुधा। ता अज इस सिलसिले च असी केड़ी फिल्म ते उस दे नाल जुड़े हुए अफसाने लेके आए हां, भला बुझो खां।

0: ताब हो।
1: हिंदी सिनेमा दी शानदार सदाबहार फिल्म चौदहवी का चांद मुख तौर ते इस फिल्म नू रोमांटिक फिल्म मन्या जांदा है। इस फिल्म ने समकालीन सामाजिक परिस्थितियां नू भी बाखूबी प्रदर्शित किया। 66 साल दा लम्मा वक्फा फिल्म नू रिलीज होया बीत चुकया है, पर जदों भी इस फिल्म नू देखण दा मौका मिलदा है, जदों भी इस फिल्म दे गीत सुनण दा मौका मिलदा है, तां फिल्म बिल्कुल तरोताजा लगदी है ते हर वार यूं जापदा है कि असी तां पहली वार ही इह फिल्म दा आनंद माण रहे हां। इस फिल्म च केड़े अदाकारां ने मुख भूमिकावां निभाईयां तां जी चौदहवी का चांद यानी के फिल्म दी हीरोइन सी वहीदा रहमान जी, जिन्ना ने की जमीला दा किरदार अदा किता। हीरो फिल्म दे निर्माता ही सी गुरु दत्त जी, जिन्ना ने असलम दा किरदार अदा किता। सहायक अभिनेता रहमान, जिन्ना ने नवाब प्यारे मियां दा किरदार अदा किता। ते इन्ना दोहां दे ही दोस्त जॉनी वॉकर, जिन्ना ने मिर्जा शहदा दा रोल अदा किता। इन्ना दे नाल फरीदा जलाल, मीनू मुमताज ते टुनटुन दियां भी फिल्म दे विच महत्वपूर्ण भूमिकावां सन। आम तौर ते हिंदी फिल्मां दे विच अंत विच कुर्बानी देण वाला पात्र दर्शकां दे विच वधेरे मकबूल हो जांदा है। इस फिल्म दे विच सहायक अभिनेता ने अपनी दोस्ती दी मर्यादा कायम रखदे हुए कुर्बानी दित्ती ते गुरु दत्त जी ने खुद तों वध प्रमुखता फिल्म दी कहानी नू दित्ती ते इस खूबसूरत कहानी नू निर्देशित किता एम सादिक होरा ने। फिल्म दे निर्देशक एम सादिक कीवें बने ते क्यों बने, गीत तो बाद।

कसर है। ना बोल सकन ना दर्द सुना सकन फिर भी सब कुछ सह जांदे ने जो इना बेजुबाना नु प्यार देन उही असल इंसान कहौंदे ने। जी हां श्रोतियो, वखरा इंसान हमेशा ही कुछ ना कुछ खास करदा है कुदरत ते बेसहारा बेजुबान जानवरां दे लई। तो इसे तरह दा ही एक नौजवान समाज सेवी टेकचंद जी मिति 11 मई शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी दे विच साडे मेहमान होणगे, जो की नौजवान समाज सेवी बेसहारा आवारा पशुआं दी निस्वार्थ सेवा करदे ने। प्रोग्राम दे विच दिलचस्प गल्लां होणगीआं उन्हां दी जिंदगी ते उन्हां दे तजर्बे बारे। उन्हां नाल गलबात करूंगी मैं यानी कि विजय लक्ष्मी ते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सुनना ना भुलना मिति 11 मई दिन सोमवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी दा ए विशेष अंक।

0: वही बन गए फसाना, मिली खाक में मोहब्बत।
1: जिथे इस फिल्म ने समकालीन समाजिक व्यवस्था का प्रदर्शन किया, दोस्ती दे ताने बाने का प्रदर्शन किया, उथे पति पत्नी दे सूखम रिश्ते दी नाजुकता भी इस फिल्म दे विच बाखूबी दिखाई गई। जिंदगी दी गड्डी दे दो पहिए जिन्हां दे सहारे परिवारक जीवन ने अगे वधना है, जेकर उन्हां विचों एक पहिया भी लाइन तो उतर जावे तां दो जिंदगियां पूरा घर परिवार किस तरह प्रभावित हुंदे ने, इह दास्तां किसी काल दी किसी समय दी मोहताज नहीं है। एह बीते समय च भी उन्नी ही प्रसंगिक सी, आधुनिक समय च भी उन्नी ही प्रसंगिक है।

फिल्म चौदहवीं का चांद बॉक्स ऑफिस ते सफल ही नहीं रही, सगो उस साल सब तो वधेरे कमाई करन वालिया फिल्मा विच्चों भी एक बन गई। क्लासिक फिल्मा दी गल कीती जांदी है, शानदार फिल्मा दी गल कीती जांदी है, शाहकार फिल्मा दी गल कीती जांदी है, उस सूची दे विच फिल्म चौदहवीं का चांद दा नाम शामिल किता ही जांदा है। सन 2003 दे विच आउटलुक मैगजीन ने भारतीय निर्देशकां दियां सदाबहार सर्वोत्तम फिल्मां दी सूची जारी कीती, जिस दे विच चौदहवीं का चांद दा नाम शामिल सी। फिल्म फेयर द्वारा अजिहियां फिल्मां दी सूची बनाई गई कि जिन्हां नूं जरूर ही वेख्या जाना चाहिंदा है, तां उस दे विच वी फिल्म चौदहवीं का चांद दा नाम शामिल सी। फिल्म कंपेनियन वेबसाइट ने खूबसूरत गीत संगीत दियां 100 भारतीय फिल्मां दी सूची जारी कीती, तां उस दे विच वी फिल्म चौदहवीं का चांद शामिल सी।

0: ताब हो।
1: जी श्रोतियों, ए सी रिश्ते दोस्ती मर्यादा तिकोणी प्रेम कहानी चौदवी का चांद जो असल दे विच इक पासड़ प्यार ते ओदे नतीजियां नू उजागर करदी कहानी सी। तां कुछ क नौजवानां दी सिद्धी साधी हसदी खेड़दी जिंदगी दो सहेलियां दे आपस विच चुन्नियां बदलन नाल किवें रुख बदल लैंदी है। जमीला दी सादगी ते समर्पण प्यारे मियां असलम ते मिर्जा शैदां दी बेलाग निरस्वार्थ दोस्ती बिना कोई गलती कित्यां ही गलत फहमी दा शिकार बन जांदी है। प्यारे मियां दी कुर्बानी जां असलम दा त्याग जालम होनी की खेड़ खेड़दी है। फिल्म दा अंत की होया मैं तुहानू इस फिल्म दा अंत बिल्कुल नहीं दसांगी। किसी भी वेले समा कड के तुसी खुद इस शाहकार दा आनंद मानना है। ते हुन मैनू सुधा नू दो इजाजत। साडी समुची टेक्निकल टीम दा धन्नवाद करदे होए नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, मिति 11 मई 2026 दिन सोमवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे अंतर्गत तुसी सुनोगे रेडियो दे 90 साला सुनहरी दौर नू समर्पित एक विशेष प्रोग्राम आवाज दा जन्म।

वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देशन सीमा मेहरा, ममता अरोड़ा ते जसविंदर कौर। आओ राल मनाइए आकाशवाणी दे 90 साल दा सुनहरी युग साडी इस विशेष पेशकश दे नाल।

प्रोग्राम श्याम सुहानी। एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा हो रहा है रात दे 8:30। पेश है प्रोग्राम रंगे गजल।

आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार। तुहाड़ा दोस्त लवलीन सचदेवा प्रोग्राम रंगी गजल लैके तुहाड़ी सेवा विच हाजिर है। खता उनकी भी नहीं यारो वो भी क्या करते, खता उनकी भी नहीं यारो वो भी क्या करते, बहुत चाहने वाले थे किस किस से वफा करते, बहुत चाहने वाले थे किस किस से वफा करते। पेश है प्रोग्राम दी पहली पेशकश मिताली ते भूपिंदर दी आवाज़ विच ए गजल।

0: दर्द है। ना बोल सकन ना दर्द सुना सकन फिर भी सब कुछ सह जांदे ने जो इना बेजुबाना नु प्यार देन उही असल इंसान कहौंदे ने। जी हां श्रोतियो, वखरा इंसान हमेशा ही कुछ ना कुछ खास करदा है कुदरत ते बेसहारा बेजुबान जानवरां दे लई। तो इसे तरह दा ही एक नौजवान समाज सेवी टेकचंद जी मिति 11 मई शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी दे विच साडे मेहमान होणगे, जो की नौजवान समाज सेवी बेसहारा आवारा पशुआं दी निस्वार्थ सेवा करदे ने। प्रोग्राम दे विच दिलचस्प गल्लां होणगीआं उहनां दी जिंदगी ते उना दे तजर्बे बारे। उना नाल गलबात करूंगी मैं यानी कि विजय लक्ष्मी ते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा। सुनना ना भूलना मिति 11 मई दिन सोमवार शाम 6:30 बजे प्रोग्राम युवाणी दा ए विशेष अंक।
1: कुछ पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है, कुछ पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है, जो लकीरों में नहीं होता किस्मत उनको मिलाती क्यों है, जो लकीरों में नहीं होता किस्मत उनको मिलाती क्यों है। पेश है प्रोग्राम दी अगली पेशकश राजेंद्र मेहता दी आवाज़ विच एक गजल शायर ने बशीर बदर।

0: नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी आवाज दी यात्रा ले जो 90 साल पुरानी है पर अजे भी तड़कती है।
1: आवाज हमारी
0: 1936 तो लेके आज तक एक आवाज जो बनी भरोसा, एक मंच जिसने जोड़े दिल, एक नाम जो हर घर दी पहचान बनिया, आकाशवाणी।

वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देशन सीमा मेहरा, ममता अरोड़ा ते जसविंदर कौर। आओ राल मनाइए आकाशवाणी दे 90 सालां दा सुनहरी युग साडी इस विशेष पेशकश दे नाल।

अब कोई खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, अब कोई खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया है हर रंग जमाने वाला, हमने अपना लिया है हर रंग जमाने वाला। पेश है प्रोग्राम दी अगली पेशकश, अनूप जलोटा दी आवाज विचे गजल, शायर ने मदन पाल।

उसको तो ये खबर थी कैसा है हाल मेरा, उसको तो ये खबर थी कैसा है हाल मेरा, उससे ही था असल में हर एक सवाल मेरा। आंसू थे कुछ वहां पर, एक नाम भी लिखा था। आंसू थे कुछ वहां पर, एक नाम भी लिखा था। गलती से छू लिया था उसने रूमाल मेरा, गलती से छू लिया था उसने रूमाल मेरा। पेश है प्रोग्राम दी अगली पेशकश, जसविंदर दी आवाज विच गजल, संगीत पद कीता है अमरजीत बाजवा ने।

सीख नहीं पा रहा हूं मैं झूठ बोलने का हुनर, सीख नहीं पा रहा हूं मैं झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने अजीज छीन लिए, कड़वे सच ने न जाने हमसे कितने अजीज छीन लिए। पेश है प्रोग्राम दी अगली पेशकश साधना सरगम दी आवाज विच गजल, शायर ने प्रकाश रोहेले आदम।

0: ਸਰੋਤਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਵਲੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗੀ ਗਜ਼ਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 8:44 ਤੇ 40 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 9:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, 9 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से

0: जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

0: भारत ने कल ओडिशा की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है।

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

सल्तनत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जवा होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, कुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ ये लहराते गेसू ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह। जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया,

0: महकते गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है वहां से टेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।